Oh Jana Radio, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आ जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

जाना रेडियो दे अवे प्लेस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहाँ पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

आत्मा कहते हैं कि न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो, ये ही सबसे उत्तम मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वो भय, चिंता, शोक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी करो मुझे परमात्मा को अर्पित कर दो। ऐसा करने से

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुन वालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और बहुत प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर और आशा जी से आप सुने, फिल्म का नाम धूल का फूल और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, मोहम्मद रफी साहब अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

आप नाराज, खुदा खैर करे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म प्यार मोहब्बत का गीत, और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एक बार फिर आशा जी, और अब है शमशाद बेगम के साथ में।

और कजरे ने ले ली मेरी जान। आशा जी के साथ शमशाद बेगम से आप सुने फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: WR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म कन्यादान का गीत।

0: ये गंगा राम की समझ।
1: Radio, tu janitor, my favorite radio station.

चमन शोला बदन पहलू में आ जावो। फिल्म गुमनाम का गीत और गीत के गाने वाले शारदा एंड मोहम्मद रफी साहब, उजाला रेडियो का प्रोग्राम

मुझको तुम जो मिले, हाँ मुझको तुम जो मिले तो ये बहार समझो मिल गया। और गीत के गाने वाले हेमंत कुमार जी के साथ गीता दत्त और फिल्म डिटेक्टिव से निकाला हुआ।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टेलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में नेखन जीवन तक यार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा। इपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। अम्स्टेलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन जीवन तक यार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा। इपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लेजगंदाम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 4:15 बजे देंस दखान स्टांद क्वार्टो फरफीर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलनबर्ग लान जीफन रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदे श्री सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तख यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील की मां अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेश्री सिंह की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंज लीफ्राउस्टहाउस वेस्ट में हो गई है जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा थी। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदे श्री सिंह मथुरा बिंदे श्री सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील के मां अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदे श्री सिंह की मृत्यु ओंज लीफ्राउस्टहाउस वेस्ट में हो गई है स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा जो थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक Woensdagavond van 7 tot 8 uur. Uitvaartcentrum Westgaarde ke Moerdalei. Ook meerweg Dosau 75 Amsterdam Oostdorp me. Aur arthi ke dagkriya. Aane wale shukrawar ke din me 3 baje. Vrijdag aanstaande 3 uur kie jayenge Westgaarde crematorium. Ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me. ये सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फुरजोर्खिंग परिवार मथुरा और परिवार बिंदेश्री सिंह के दुख में शामिल है।

क्या खूब आंखें है तेरी, क्या खूब आंखें है तेरी, जी लेंगे देख देख कर इनको। फिल्म काम चोर का गीत आप सुने किशोर कुमार और अलका याग्निक से उजाला रेडियो पर।

तुम क्या मिले जाने जा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

और एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से और कम है जवानी नेहा कक्कर, उन्हीं की आवाज में और साथियों से आप सुने उजाला.nl इन्फॉर्मेशन के लिए।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाला रेडियो सुनने वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त हो गया है एक घंटे में अभी सरनाम देश के समाचार हम लाने वाले हैं। और मैं भी बता दूं कि फंदाख इस रोबी मक्का नीत वन रोबी गल है फकांसी से, मगर सरनाम देश की कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। दिस व्हाट न्यूज आउट सुरीनाम एंड नतुलक वत लुख्तग ऑनवर्ड। और हो सके हैं कि अदमिया भी अब यहाँ स्टूडियो में आएगा या एनर है आनंद चंदी कसिंग, मगर म्यूजिक के साथ समाचार एंड कुछ बातें जो हम आपसे बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम आलमाल ऑफ देश प्रातः जोंदा।

जाना रेडियो सुनो लो हर कामकाज के लिए फॉर ऑल जो भी कामकाज रहा तू एगो ईमेल पठाओ नार info@ujala.nl एंड आल्सो विल मे डून तो के कुछ हैगा तू मांगे दिवाली फकल ऑफ तो हमें कुछ करे स्टूर डार ओक एन ब्रिग ओवर नार info@ujala.nl पर आप भेज सके हैं सुनने वालों उजाला रेडियो ये हैं और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नाम आपको सुनाने को जाने जोमदेन हैव वाई सुभाष फनफ 3 uur सुभाष के जरिए बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम अभी आप सुन लेना फनफ 3 uur कुछ देर तक हम आपके लिए कुछ गाने सुनाने वाले हैं एक गाना है जो कि हमें बहुत मोह लगेगा ये गाना सुनिए और ये है माइटी मुकेश के गाना आज के इस सोमवार के शाम के प्रोग्राम में ये गाना हम आपको हम माइला सुनावे मुकेश की आवाज में फिल्म देवर का गाना है देवर फिल्म का नाम है देवर ये फिल्म में काम कर जाएगा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर एंड दैन सी यू दैट धर्मेंद्र दान अखतर पियानो सिट एंड दैन एक्टेट ही दिस नंबर गजोंग डोर माइटी मुकेश आया है मुझे फिर याद

कुदरत का है करिश्मा, एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरजमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हर किस न भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे तमाम सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, आज इतवार का शाम का प्रोग्राम, 20 तारीख सितंबर का प्रोग्राम, सोमदाग 20 सितंबर। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनके तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा, इस यू आर उजाला रेडियो। हमारे प्यारे सुनने वालों, जहां पर आप लोग हमें बैठ करके सुनते होंगे, चाहे जिस हाल में सुनते ही जाइए, दिन में 5 बजे तक। अगर आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे, हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203309 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। तो चलिए पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, द यंग टाइगर ऑफ बैठक गाना, विशाल हीरा की आवाज में।

0: वेल शाबाश शाबाश आनारे पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में अवसर से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने द यंग टाइगर ऑफ बैठक गाना विशाल हीरा की आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुने वालों आकर में मीला भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं। और मीला बैठ के प्रोग्राम सुने हैं, मीना होना चाहिए, मीना आकर में बैठ के प्रोग्राम सुने हैंक की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी मीना के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ ई गलवा मांगी से मीना बचाई के
1: तेरी उम्र है 16 साल
0: दारू डोक्सा दूसर मेहरारू

वेल शाबाश शाबाश सजनिया बहिया में बहिया डाल तेरी उमल है 16 साल और इस तरह से द टाइगर ऑफ बैठगना विशाल खेमाई जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड अब की बार देखा जाए तो भाई अर्जुन बिहारी और वीरेन इस सब दोनों मिला मॉरिशियस के स्थान पर बैठल है एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुने हैं। तो चलिए भाई अर्जुन बिहारी एंड वीरेन ये गाना आप लोग के नाम कृष्ण छेदी के बाद

वेल शाबाश शाबाश। और इस तरह से क्रिसम चेदी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं और इस गाना को गाने वाले होंगे सरवीन तेजू के आवास में और ये गाना पेश है दनहाग शहर में आनंद जग्गू के नाम। भाई आनंद ये गाना तुम्हारे नाम

वेल शाबाश शाबाश आई बॉय जाने वाले बालमुआ बोले लौट क्या और इस गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सरवीन तेजू के आवाज में सुरिनाम का टाइगर एंड अब की बार देबा जी के आवाज में और इस गाना पेश है दरहा शेर करने वाली शीला के लिए और शीला कलिया मेरे फार्थ में बेटाइल बोले भाई सुभाष बोले वो गाना हमारे खा तू आज शेखर बजा दिए नतीउल्लाह बोली तो इस गनवा है शीला के लिए जो दनहाक शहर

शाबाश शाबाश बोले सखिया खोलो रे कमेड़िया बोले पिया पर देसवा जइयो ना। और इस तरह से स्वर्गीय देवा जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने वेल एक मिला। और मेरे फर्द में कल यहाँ बैठा बोले तो सबके बोले यौन टाइगर में बोले तू बाटे ये को टाइगर बैठक गाना का थैंक यू वेल भाई आनंद मंगरू ये गाना तुम्हारे नाम मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में आई बॉय यू आर।

शाबाश शाबाश भलल रेलिया में बैठल एगो पक्का पक्का नशेड़ी एंड यू आर उजाला रेडियो मोती माला भोला सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड लक्ष्मी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश दागाबाद बतिया तोरी ना मानू रे और सर से बी जनवती चैतु जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो फैन सपोर्टर में एम ई जी पी प्रोग्राम को बैठ करके सुने एंड यू आर है उजाला रेडियो आई बॉय।

वेल शाबाश शाबाश बबना आवे जाए एन छुए चारी वोर आई बॉय कितना भी साल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने स्वर्गीय रामदेव चैतू जी की आवाज में, इन्हीं की आवाज में एक और गाना आप लोग सुनेंगे और इस गाना को मांग करने वाला है आमेरे में देखा जाए भाई मनोज मुंगार प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम

0: वल जिंदगी है क्या उड़ती हुई हवा, उड़ती हुई हवा क्या और इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार गाना को मांग करने वाला है देखा जाए भाई अनिल। आई बोय गधा हुआ कि क्या हो गए गधवा के मुसीबत है
1: मनुष्य इंसान एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर ई जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हाफिस।
2: अच्छा भैया जयराम तब जब तू मरिए तब तू कौन की हो
1: भैया हाफिस, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जा और जो मरब ऐसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन कर।
0: आई बॉय

शाबाश दूसर के धनवा तू खाई के जब मर जाइये तो तू गधा बन के भरिए आई बोई ऐसर से स्वर्गीय हरित जय राम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गाना को गाने वाले होंगे आंद्रे मोहन और इस गाना हम पेश करेंगे हमारा एक्स कोलेखा रशीद सुलेमान स्केफोल का।

मिला के प्यार कीजिए, और इस तरह से अंद्रे मोहन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड हमारे प्यारे सुनने वालों, रिक्लाम के बाद ना दे ब्रेक, हम फिर आप लोग से मिलते हैं। और ये गाना हम ब्रेक के उस पार आपको जरूर से सुना देंगे, आप लोग सुनते ही जाना उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा। और

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। बस इंदिश का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हर इतवार की शाम में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं। प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यार इतवार का शाम को आप लोग चाहे जोंची करते होंगे या तो भोजन करते होंगे या पकाते होंगे या तो आप घर के कामकाज करते होंगे या तो आप कपड़ा तिरकी कर तिरकी करिए और लाइन में तू जाने तो लाइन में तू चाहे मोई से बैठावे के नहीं थम ना पहनबे। करीबन 8 मिनट बाद चुकल है 4:04 और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो मोती माला भोला सिंह जी की आवाज़ में और ये गाना पेश है।

0: शाबाश शाबाश आइले बलमुआ बजरिया में और मोर मन लगा वेल बलमुआ तो से यार आई बॉय यू आर उजाला रेडियो मशीन इसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा हर एक इतवार की शाम आप लोग के नाम
1: ठक ठक ठर केला हो चीरा ठक ठक ठर केला
0: आई बॉय दिलवा हमार धक धक धक धर केला
1: कमरी चपी तारे लचकीला हजरिया नोट पर सेला कमरी चपी तोरे
0: और देखा जाए होर शर्मिशी ने भी प्रोग्राम को

वेल शाबाश शाबाश मिलकर बिछुड़ गई अखियां और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों एक बात तो लोग समाइल बोले ये बतिया तो लोग मोई से सुनिए वन बोले अतवार के मई साल बोले अतवार के सब बोले इनफोदक कर रहेगा ऑन बैत एक मिला बोले हम किन के ले ली है सख्त पेंचस या हर्द पेंचस और क्या करे से ओली सार्दिन काटी सहीगा प्याज काटी से और मरचा और कुछ ना सफा करीस ना और पेट चीरीस ना कुछ बोले वैसे धर के खा लीस बोय आई बोय उस चीज हम ना करते यार। ओके कोई बात ना है जैसे तू मांग हम तो कर पेटवा चीर के सब सफा करके तब खाए लो। तो चलिए अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे पियानो में श्रीमान रामसुख के लिए पेश

वाले शाबाश शाबाश जो इस तरह से अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में। और चलिए अब की बार तिलबरुख शहर में देखा जाए, सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने बोलो। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा है गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं।

वेली शाबाश शाबाश शो इस तरह से ये गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने आंद्रे मोहन की आवाज में। चलिए देखा जाए बरेड़ा शहर में गायत्री भी प्रोग्राम को बारी करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम।

वेल, जब से देख ली सूरतिया तो हार गोड़िया, और इस तरह से ललिता प्रसाद पूरन जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड अब की बात देखा जाए रोतरदम में, प्रोग्राम को बैठ करके सुने और वो भी खास करके चांद छेदी प्रोग्राम को बैठ कर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

शाबाश शाबाश बोले धोबिया मरु जाइए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और खास करके राजू शिव गुलाम की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए हार्लेम शहर में सीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, तो यह गाना तुम्हारे नाम स्वर्गीय सनातन जी की आवाज में।

शाबाश शाबाश। चौबीस तरह से खान शुरू के स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। वैसे इसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा

और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए तो करीबन 10 मिनट बाकी रहा 5 बजने में, 10 मिनट बाकी रहा 5 बजने में, और आप लोग उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, एक और ऐसा ही बैठक गाना जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं।

0: शाबाश शाबाश पातर मोरी कर भूई डोले बालम। और इस तरह से चांद छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। आई बॉय हमारे प्यारे सुने बोलो, थोड़ा देर तक और या खाली 4 मिनट और आप लोग के साथ वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा, पंडित रामचंद्र बंसीधर जी के आवाज में गाना आप लोग सुनिए।
1: अरे रहिया मिल गए सावन कन्हैया।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, इसी गाने के साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आशा की जरसा जिस तरह से प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हम आप लोग के लिए बनाएंगे, वैसे इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए हुए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले सप्ते इतवार को फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग अपना इतवार का शाम, इतवार का रात्रि मोई से बिताइए, मोई से रहियो। जो भी आप लोग करेंगे प्यार से कर लेना, दुलार से कर लेना। एंड फॉर सुरक्षी सलमाल एटी सुमाकल कलमाल, स्वादिष्ट भोजन कीजिए, चाहे अंडा बाका भात, चाहे जो चीज आप लोग खाइए, प्यार से खा लियो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद, मोई से रहिए।

उजाला रेडियो सुनने वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त हो गया है एक घंटे में अभी सरनाम देश के समाचार हम लाने वाले हैं। और मैं भी बता दूं कि फंदाख इस रोबी मक्का नीत वन रोबी गर्ल है फकांसी से, मार सरनाम देश की कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। दुस वत न्यूज आज श्रीनाम है नतीलक वत लुख्त खोंद वेर पर। और हो सके हैं कि अदमिया भी अब यहाँ स्टूडियो में आएगा या एंड हैवी गुड ओवर आनंद चंदिका सिंह। मार म्यूजिक के साथ समाचार एंड कुछ बातें जो हम आपसे बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम अलमाल ऑफ देश प्रातः जोंदा।

वाले रेडियो सुनो लो हर कामकाज के लिए फॉर ऑल जो भी कामकाज रहा तू एगो ईमेल पठाओ नार info@ujala.nl एंड अल्स यू विल मे डून तो के कुछ हैगा तू मांगे दिवाली फकल ऑप्टोक्ट में कुछ करे स्टूर डार ओक एन बरिख ओवर नार info@ujala.nl पर आप भेज सके हैं सुनने वालों उजाला रेडियो ये हैं और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नाम आपको सुनाने को जा रहे हैं जो मतेन हैबे वाई सुभाष फनफ 3 uur सुभाष के जरिए बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम अभी आप सुन लेना फनफ 3 uur कुछ देर तक हम आपके लिए कुछ गाने सुनाने वाले हैं एक गाना है जो कि हमें बहुत मोह लगेगा ये गनवा सुनिए और ये है माइटी मुकेश के गाना आज के इस सोमवार के शाम के प्रोग्राम में ये गाना हम आपको हम माइला सुनावे मुकेश की आवाज़ में फिल्म देवर का गाना है देवर फिल्म का नाम है देवर ये फिल्म में काम कर जाएगा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर एंड सी दैट धर्मेंद्र दान अख्तर पियानो सिट एंड दान एक्टेट दिस नंबर गज़ोंग डोर माइटी मुकेश आया है मुझे फिर याद

Nou ja, is ganama ja kahi igana ke saat dan ja hoop ik dat je toen ook bij पहले जमाना के कुछ बात याद आ गए होंगे। उजाला रेडियो ये है सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको हमने वादा किया था एक हाथ से द सत्यम मातदिन के गाना हम जरूर आपको सुनाएंगे। सत्यम मातदिन आ रहे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में सत्यम मातदिन।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत स्वर्गीय श्री मनीराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय मां साम्राजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन सात भाऊजी के ननद दो छोटकू के बड़की और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी आम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा वेलमा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु आम्स्टरडम के ओंजे लीफ फ्रावखास्ट हाउस में हो गई है। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत स्वर्गीय पिता श्री मनीराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय मां श्री साम्राजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन सात भाऊजी के ननद दो छोटकू के बड़की और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी आम्स्टरडम वेस्ट की रहने वाली विधवा वेलमा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु आम्स्टरडम के ओंजे लीफ फ्रावखास्टहाउस वेस्ट में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक आउटफार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेडा कांस्टांड द्री उर किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह और परिवार मथुरा के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो सुनने वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। और घड़ी की तरफ देखा जाए तो वक्त हो गया है एक घंटे में अभी सरनाम देश के समाचार हम लाने वाले हैं। और मैं भी बता दूं कि फंदाख इस रोबी मक्का नीत वन रोबी गल है फकांसी से मार सरनाम देश की कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। दिस व्हाट न्यूज आउट सुरीनाम एंड नतुलक व्हाट लुख्त खोंद वर्क। और हो सके हैं कि अदमिया भी अब यहाँ स्टूडियो में आएगा या एंड हैव इट ओवर आनंद चंदिका सिंह। मार म्यूजिक के साथ समाचार एंड कुछ बातें जो हम आपसे बताने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम अलमाल ऑफ देश प्रातः जोंदा।

ऑन रेडियो सुनो लो हर कामकाज के लिए फॉर ऑल जो भी कामकाज रहा तू एगो ईमेल पठाओ नार info@ujala.nl एंड आल्सो विल मे डून तो के कुछ हैगा तू मांगे दिवाली फकल ऑप्टोह में कुछ करे स्टूर डार ओक एन ब्रिग ओवर नार info@ujala.nl पर आप भेज सके हैं सुनने वालों उजाला रेडियो ये हैं और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नाम आपको सुनाने को जा रहे हैं जो मतीन है वह सुभाष फनफ 3 uur सुभाष के जरिए बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम अभी आप सुन लेना फनफ 3 uur कुछ देर तक हम आपके लिए कुछ गाने सुनाने वाले हैं एक गाना है जो कि हमें बहुत मोह लगेगा ये गनवा सुनिए और ये है माइटी मुकेश के गाना आज के इस सोमवार के शाम के प्रोग्राम में ये गाना हम आपको हम माला सुनावे मुकेश की आवाज़ में फिल्म देवर का गाना है देवर फिल्म का नाम है देवर ये फिल्म में काम कर जाएगा धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर एंड दान सी दैट धर्मेंद्र दान अख्तर पियानो सिट एंड दान एक्टेट ही दिस नंबर गजोंग डोर माइटी मुकेश आया है मुझे फिर याद

Nou ja, is ganama ja kahi i gana ke saat dan ja hoop ik eigenlijk je toen ik bij पहले जमाना के कुछ बात याद आ गए हैं। उजाला रेडियो यह है सुनने वालों, और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको हमने

तो त्यम मार्दिन के गाना हम जरूर आपको सुनाएंगे। सत्यम मातदीन आ रहे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में। सत्यम मातदीन।

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

0: लोरी लोरी लोरी ए मई लोरी, अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां, ये मर्द भी कर सकते हैं।
1: मर्द जिंदाबाद।

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझतो बेशरम। अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के को